फूल हन पते हन फल हन तरवर एक अनंत डार साखा पोह पो पत्र रस परिया ए अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरे करिया ऐ पाई इस अनुसार अमृत दी बगीची है अमृत दा बाग है और इस बाग नू परमेश्वर बनाने वाला है इस गल नू ओ समझदा है जिदे अंदर राम दा परमेश्वर दे नाम दा प्रकाश हो जाए ते जिदे अंदर राम नाम दा प्रकाश हो जाए ओही गुरमुख बनदा है ते ओही फेरे कहंदा है नांको बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बन आई अज दा इंसान संसार नू परमेश्वर दा रूप नहीं समझदा इसे वास्ते ए लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हुंदे हन इसे वास्ते इंसान इंसान दे नाल नफरत करदा है कबीर साहब कह रहे हन अगर पूरा गुरु मिल जाए ओ इन्हां गल्लां दी सोझी करांदा है कि ऐ इंसान इस संसार परमेश्वर दा बनाया होया है ओदे बनाए हो जीवां नाल प्यार कर कोई भी बेगाना नहीं पर इन्हां गल्लां दा उदों पता लगदा है जदों अंतर जोत राम प्रगासा जदों अंदर राम नाम दी जोत जग जाए पर ए जोत किस विरले दे अंदर जगदी है ते कबीर साहब ने कह दिता जानी जानी रे राजा राम की कहानी मैं हुण इस कहानी नू जान ले है ए सारा संसार परमेश्वर दा बनाया होया है इसे वास्ते ते मैनू कोई बेगाना नजर नहीं आंदा।

ज्ञान अंजन अंजन कहंदे ने सुरमा गुरु ने ज्ञान दा ऐसा सुरमा दिता कि मैनू इस गल दी सोझी हो गई राम नाम तो बगैर जीवन

ता तृष्णा रूपी जल सुख गया, मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है ये सारिया भुखा तृष्णावां खत्म कर देंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती, हर इंसान भज रहा, जिद को एक चीज है उसनु दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्होंने तसली नहीं, कुछ होर चाहता है। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता है। हर इंसान भज रहे है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख बहुती माया विच भी नहीं।

क्योंकि बाणी गुरु देंदा है। इसे करके सतगुरा ने इंसान नु कहा किसे बेतारी दे पिछे ना लगो, बाणी नाल जुड़ो, क्योंकि बाणी परमेश्वर दी है। जो परमेश्वर कहंदे गुरु ओहो ही उपदेश करदे, ते गुरु कहंदे तुसी मैनू परमेश्वर ना कहो, मैं भी परमेश्वर दा भेजिया आया, मैं ते परमेश्वर दा सुनेहा तुहानू देना है, ते तुसी भी परमेश्वर नाल जुड़ो। ए बाणी मेरी नहीं, ए परमेश्वर दी बाणी है। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान विला लो। जेड़ा इंसान, जेड़ा पीर पैगंबर अपने नाल जोड़े कि सब कुछ मैं हां, मैं परमेश्वर हां, समझो वो परमेश्वर तू भुलिया होया। तो जेड़ा परमेश्वर नाल जोड़े असल विच, समझो ये परमेश्वर नाल जुड़िया होया है, क्योंकि ये परमेश्वर नाल जोड़ रहे हैं। तो सतगुरु जी कहंदे ने ए देवी देवते अवतार पीर पैगंबर सारियां नूं एक परमेश्वर भेजण वाला है, एक अल्लाह एक वाहिगुरु संसार ते भेजण वाला है। इस करके उहदे नाल जुड़ो। गुरु इन्हां गल्लां दा ज्ञान करांदा है कि मेल करना है तां परमेश्वर नाल करो। ते सतगुरु जी फरमांदे हन

हजार सूरज चढ़े, कितना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे, सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे, तां वी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान नहीं। कई बारी आपां देखदे हां एयर कंडीशन कमरे होंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा होंदा है गुस्से दे नाल, उहदे मन नूं चैन नहीं होंदा। रोशनी विच इंसान बैठा भी अंधेरे विच होंदा है, अंधेरा केड़ा? अज्ञान दा। अज्ञान की है? अज्ञान ए है कि दूसरे दा हक मैं खावां, अपनी सुख वास्ते दूसरे दा हक खाना, दूसरे नूं दुख देना, ए है अज्ञान। ते ज्ञान की है? ज्ञान ए है कि भाई सारे विच परमेश्वर है, सारे विच खुदा है, वाहिगुरु है, जे सारे विच ओ है फिर ते मैं सारे नाल प्यार करांगा। इन्हां गल्लां दी सोची

हजार सूरज होवे सौ चंद्रमा होवे पर जे गुरु नहीं मिलिया ता इस चाननी दा क्या फायदा जे मन दे विच ज्ञान नहीं मन विच अज्ञान है।

परमेश्वर दी कहानी दा पता नहीं लगदा। गुरु परमेश्वर दी कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जिहड़े गुरु दा उपदेश सुनदे ने ओ फिर इस कहानी नूं जान लैंदे ने कि सारे विच

पर ब्रह्मा छोटा भरा कह लगा सेठ ने तेनु वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती, पावे उन्हें माया तेनु बहुती मेनु थोड़ी दिती, पर गए दे आप इकट्ठे से इस कार्य के असी बराबर हिस्सा करना, और पैसे तू झगड़ा हो गए और झगड़ा होंदा भी अक्सर देखते हैं। देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं, इस वास्ते नहीं कि उन्होंने कोई सेवा दा चाहे, बहुत घट होंदे हैं सेवा वाले, बहुते ते अपने स्वार्थ वास्ते ए नारा लगांदे ने असां सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं होंदी, सेवा ते मन होंदी। हुण मन विच लालच दोनों भरा हैगे ने भगत, पर माया पिछे लड़ पे। ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होवेगा, पानी विच रह के पानी दे विच रहन वाले जीवां नूं खा के अपनी लालच वाली ए बिरती पूरी करेगा। हुण ब्रह्मा ने भी तप कीता, उसनूं भी गुस्सा आया, उसने भी श्राप दे दिता। कहन लगा ठीक है भरा, जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रहेगा, तेरी भी मौत होवेगी, तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच पटकदा पटकदा एक दिन उसे जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा, मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तेनू गोते दे दे के मारांगा, और इस गल का बदला लवांगा कि तू मैनु श्राप दिता है। ने भगत पर माया विच आ गई, और माया ने दोनों नू भगती दे थां तो थले सुट दिता। समा आया दोनों दी मौत हुई, वड्डा मस्ताथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नू गुरबाणी विच भी साहब जी बयान करते हैं, राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, कार ऊपर कढ़ निस्तारे, गज पत पार उतारे। अनेकां शब्दां विच इस शाखी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक भरा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया, और वो समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी, बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने, ए जंगल विच फिरदा फरांदा गंडका नदी दे डुंघे आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी, ए ज्यों ज्यों अगे होया इस नूं ठंडा पानी मिले, और हौली हौली ए हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया, और अगे एदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी। उसने अपनियां तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले और हाथी नूं अपने वल खिंचना शुरू कीता। पहला ते हाथी ने परवाह ना की, पानी पी के वापस मुड़न लगा, पिछे नहीं मुड़िया जांदा, ते हाथी समझ गया मैनू कोई पकड़न वाला तगड़ा जीव है। इसने जोर लाया, कुछ पिछा आया, पर फिर तंदुए दा जोर चलिया, ते हाथी नू खिच के ओ पानी दे

अपने साथियों नूं कुछ कहिंदा है, पर इहदे नाल दे साथी पानी विच नजर कुछ नहीं आंदा, की मदद करन। लिखिया इतिहास विच बहुत समा इन्हां दी खिचोतान हुंदी रही। अगर हाथी दा योर चले ओ तंदुए नूं खिच के किनारे तक ले आवे, तंदुए दा योर चलदा है ओ हाथी नूं खिच के डूंघे पानी विच लै जांदा है। हाथी दे नाल दे इहदे जिहड़े साथी सन ओ टाहणियां तोड़ तोड़ के पानी विच सुट्टदे। कुछ इस हाथी दे काबू आंदियां ने, कुछ टाहणियां पानी विच रुढ़ जांदियां। साहब जी बाणी विच फरमांदे हन, जानवर दी गल नहीं इंसान दा भी इहो हाल है। सुख में बहुत संगी भाए, दुख में संग ना कोई। सुख होवे ते हर कोई मित्र बनन दी कोशिश करदा, दुख लगे ते सके भी साथ छड़ जांदे। हाथी दे नाल भी इहो ही वापरिया, हौली हौली इहदे साथी साथ छड़ के चले गए, हाथी इकला रह गया। हुण खुराक धरती ते है हाथी दी, पर हाथी है पानी विच। खुराक नहीं मिलदी, कमजोर हुंदा गया, तंदुआ पानी विच है, उहदी खुराक पानी विच, उह अपनी पूरी ताकत विच है। आखिर तंदुए दा योर चलिया हाथी नूं खिच के पानी दे इतनी डूंघाई तक लै गया कि हाथी सारा डुब गया, पर इहदी सुंड बाकी रह गई। कुदरती कोई कवल दा फुल पानी ते रुड़े आ रहा सी। हाथी ने सुंड दे नाल ओ फुल फड़ के आकाश वल कीता। मानो अरदास पिया करदा है, ऐ परमेश्वर माया दे लालच विच असां दोनों भरावां ने कितना दुख पाया, माया नूं मुख रख लिया, तेरे नाम नूं पिछे छड़ दिता, और इस वेले तेरे तो सिवा मैनूं कोई नहीं बचा सकता। ऐ परमेश्वर मेरी रखिया कर। हाथी ने पुकार कीती तां उसे वेले विष्णु भगवान नंगे पैर गंडका नदी दे किनारे पहुंचे, अपना सुदर्शन चक्र पानी विच छड़ के तंदुए दियां तारां कटियां और हाथी दी बंद खलास कीती। गुरबाणी विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच धन गुरु रामदास जी महाराज आप बयान करदे हन, राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो। जिस तरह कुंचर हाथी नूं कहिया, हाथी नूं तंदुए ने पानी विच डोबण दी कोशिश कीती, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, घर उपर कढ निस्तारे। हाथी ने सिमरन कीता ते परमेश्वर किस तरह अपने प्यारियां दियां अरदासां सुनदा है। परमेश्वर भगतां दी रखिया वास्ते अपने दूतां नूं अपने प्यारियां नूं भेजदा है। विष्णु भगवान ने आप नदी किनारे पहुंच के तंदुए दियां तारां कटियां और हाथी दी बंद खलास कीती। ए हाथी पानी विच बाहर निकलिया, नदी दे किनारे आया ते की देखदा है, सामने विष्णु भगवान खड़े हन। बेशक जोन हाथी दी है पर सोझी है, हाथी नूं सारी सोझी है, फिर भगवान सामने खड़ा है ते जीवन दी सोझी क्यों ना होवे। अगलियां दोनों लता निवा के हाथी ने नमस्कार कीती और मानो पुकार पिया करदा है, भगवान कृपा कर, इस जून दे विचों साडा छुटकारा कर, बड़ा दुख भोगे है।

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह का नाम जपेगा, जो एक बारा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बो तायो। मथुरा कहिंदा है पट के जद तक साढ़े भाग नहीं सन जागे, असी संसार विच विचर रहे सन, लेकिन कल युग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए, ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज, और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावें जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावें सनकाद साध सिदादक मुन जन गावें अचल छला, गावें गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानी। उस गुरु नानक दे गुण जदों राजे जनक दा दरबार लग्या सी, और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की, और भगत वड्डा क्यों गिणिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखिए। सात संगत बोलो श्री, ते भाई गुरदास जी कहिंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरां दा जिक्र राजा जनक देव लोक नू गया, देवते भी लोचदे हन कि कोई जपण वाला साडी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नूं देव लै के देवते लै के अपनी पुरियां विच जा रहे सन, ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई। राजे जनक ने पुछया कौन रो रहे हन, तां देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हन जिथे पए होए जीव अपने कर्मा दे अनुसार भोग भोगदे हन, क्योंकि इन्हां जीआं ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती, इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जिहड़ा हीरे लालां तों भी महंगा सी, जिहड़ा स्वास हीरे लालां तों भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पाके, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता और तू बंदगी नहीं कीती, तां तू अपने मनुखा जन्म नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया, उस स्वासां नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया। ताई आखिया

राजे जनक ने आखिया देवतियां ने महाराज ए नरक और इत्थे पए जीवां ने नाम नहीं सी जपिया ना, इस वास्ते इन्हां दी आत्मावां नूं तसीहे दित्ते जा रहे। तां राजे जनक ने उत्थे एक घड़ी बह के सत्संग कीता और नरकां दे जीआं नूं मुक्त कराया। ताई आख्या तन तन राजा जनक है जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। एक घड़ी दे सिमरन दे नाल जो राजे जनक ने मन करके उत्थे कीता प्रभु दे चरणां नाल जुड़ के आख्या नरकां दे नरक खाली हो गए उस जपन वाले दी सदके। क्योंकि जिस वेले नाम नूं एक पलड़े विच रखिया धर्मराज ने सत्संग दी एक कड़ी नूं एक पलड़े विच रखिया ते नरकां दे पापियां दे पापां नूं दूजे पलड़े विच, ते नाम दे तुल ओ पाप ना तुल सके। सत्संगत बोलो श्री साईं नाम अमोल कीम ना कोई जान दो। आखे साईं दा नाम एटा अमोल है दी कोई कीमत नहीं पा सकता, इसनों कोई तोल नहीं सकता। तां ओ राजे जनक दे दरबार विच जिस वेले गुरु नानक दे गुणवान हो रहे सन ते एक रिखी ने आख्या गुरु नानक कलयुग विच आएगा, ते क्या राजा जनक जी असी गुरु नानक दे दर्शन कर सकांगे? आख्या क्यों नहीं, तू स्वास दसम द्वार ते चढ़ा लै ते असी तेनू एक मठ विच पा देंदे हैं, ते धरती पुट के तेनू उस धरती विच दब देंदे हैं। जितों कलयुग आवेगा कलयुग दा समां ते गुरु नानक निरंकार गुरु नानक बन के संसार ते आएगा, ते रिखी ने आखिया मैनू मैं गुरु नानक नू किवें लब्बांगा? ता राजा जनक कहन लगा तेनू गुरु नानक लभण दी लोड़ नहीं, गुरु नानक आपे ही तेनू लभ लेगा। साथ संगत बोलो श्री ते जदों फिर समा बदलिया कलयुग दा समा आया ते गुरु नानक जदों पंजवां गुरु नानक बनिया गुरु अर्जन देव महाराज, ते जिस वेले संतोखसर जिथे अज पवित्र अमृतसर की धरती ते संतोखसर दा सरोवर है उसकी खुदाई हो रही सी, गुरु अर्जन देव पातशाह टाली तले बैठे सन। इस गुरुद्वारे नूं टाली साहब करके भी नाम प्रसिद्ध है। ते जिस वेले सरोवर दी सेवा हो रही सी तां खुदाई दे वेले जदों प्यार वाले खुदाई कर रहे सन ते ओ कई उस मठ नूं जाके लगी, ते सिखां ने आके बेनती कीती गरीब निवाज कोई मठ है ते जापदा उहदे विच कोई रिखी है? साहिब गुरु अर्जन देव महाराज कहण लगे हाँ एक रिखी है जो राजे जनक दे समय तों साडे दर्शन करन वास्ते पिया है। गुरु अर्जन देव महाराज आए उस मठ नूं एक एक इट अपने हाथ नाल हटाई किते रिखी नूं लग ना जावे, ते ओ रिखी एक शरीर दा पिंजर ही रह गया सी। गुरु अर्जन देव पातशाह ने अपनी गोद विच उहदा सिर रखिया, मुख ते छटे देते जल दे, सिर ते हाथ रखिया, ते रिखी ने अखां खोलियां पुछिया केड़ा समां है? तां गुरु अर्जन देव महाराज कहण लगे कलयुग है। कलयुग कमिया रिखी कहण लगा मैनू कलयुग दी तत्ती वाह ना लगे, मैनू बचा लो। ते फिर झट ख्याल आया ओह मैं आप ही तां कलयुग विच आउणा चाहुंदा सां कि मैं गुरु नानक दे दर्शन करां, उस निरंकार दे दर्शन करां। ते फिर कहन लगा रिखी के कलयुग विच गुरु नानक ने आउना सी। गुरु अर्जन देव पातशाह जिन्हां दी गोद विच रिखी दा सिर है दसम द्वार तो स्वास तले उतरे। गुरु अर्जन देव पातशाह ने सिर ते हाथ रख के स्वास उतारे ते पुछदा मैं गुरु नानक दे दर्शन करने हैं। कोल खड़ोते बाबा बुढ़ा जी कहन लगे पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव महाराज दी गोद विच ही तेरा सिर है रिखी। साथ संगत बोलो श्री। उस वेले जिस वेले रिखी ने गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन कीते कहन लगा सचमुच
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਰਿਖੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਿਦਕ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜਪੇਗਾ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਰ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਤ੍ਰਿਗੜ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਜੋ ਜਪੇਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪੀਏ।

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

मैं तेरे तो बलिहारी जावा, मैनू भगती दी दात दे, जिदे करके ए मेरे जीवन दी बेड़ी संसार समुंदर तो पार लंघ सके। ता आओ किरपा करो सरवन।

जी बदो मुल्ला कहो ने आओ खुदाई जी बदो सो धर्म कर थापो अधर्म कहो कत भाई जी बदो सो धर्म।

परमेश्वर जिस दे चरना कमलां विच दास ने अर्ज करनी है, अरदास करनी। अरदास दा मकसद एहो ही है कि आउन वाला जो समा है मनुख उसको जानू नहीं कि आउन वाले समय दे विच की हो सकता है, सुख मिल सकता है या दुख मिल सकता है, मगर जो परमेश्वर है, जो साडा साईं है, साडा खसम है, उसनू ज्ञान है, वो जानता है कि आउन वाला समा कैसा है। ते मनुख उस शक्तिमान परमात्मा दे चरना कमलां विच ये बेनती करता है कि है मेरे साहिब, मेरा आउन वाला जो समा है उस दे विच मैनू सुख प्राप्त हो, मैं इसे करके तेरे चरना कमलां विच अरदास करदा। ते साहिब फरमाउंदे हन कि ए गुरसिख, तू उस दी रहमत दा पात्र बन, क्यों जो ओ तेरे ते मेहर कर देवे ते तेरे सारे कार्ज रास हो जाने। मेहर करे जिस मेहरवान,

सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा।

0: are listening to SeekNet Radio.
1: Sardar, pehla ta ek pind da shal uthya, fir aunda ne ek hor shau karta fir.
2: Shabash. Sherya, eh maal saran jande.
3: Chokum, Sardar.
1: Aye, jabra! Aye, akhar! Aye, jabra!
4: मेरी बॉडी तो देख रही पागल हो जाएगी। मेरी सिंगिंग से कालेज देसी की ओर धीमे वालू।

जल्दी चुटी हो जल्दी अरे तोड़ा चुटी हो जल्दी अरे तोड़ा सुच्चा है हाँ सुच्चा है जाओ बंदिया।

0: पहले ही देख तेरा नाम खुंडकारा।
1: खुंडकारा क्यों लगूंगे?
0: खुंडकारा लकड़ी के उस टुकड़े नु कहंदे ने जिस उत्ते पटरा टिकाया जांदा।
1: पटरा क्यों दा?
0: जिस उत्ते धोबी कपड़े धोंदे ने। भगत नामदेव जी दात दे छीने सन ना, कपड़े धोंदे धोंदे हो अपनी आत्मा नु हरी नाम नाल धोंदे सन। इसे लिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम की उंगली टेके जिन्नी के पटरे नु खुंडकारे दी।

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल के मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा भरिया। तकना के परमात्मा रूप कैसा वेखदा, शारीरिक रूप नहीं वेखदा,

पर तू अपने नाल भी अपराध कर रहे। किस तरह? नाम ना जपे से आत्म घाती। जो मनुख नाम नहीं जपते सिमरन नहीं करते वो अपनी आत्मा का आत्मघात करके अपराध कर रहे हैं।

लक्षण बदल गए, सुलक्षण हो गए, शुभ लक्षण हो गए। लक्षण कहते ने जो कुछ नजर आता, मनुख की अंदर की रहनी जिस वे बाहर आ जाती है लक्षण कहा। सतगुरु क्योंकि मनुख की रहनी सुधार देंगे ने, इस करके जबान मिठी हो गई लक्षण चंगा है, चाल ठीक हो गई करते पुरख ताल दिवाया, जिंदगी ताल विच आ गई, बेताली जिंदगी ताल विच आ गई, चाल ठीक हो गई। और एक कहने लक्षण जेड़े ने रफ्तार दस्तार गुफ्तार यही तो गल्लां होंदियां ने जिन्हां तो बंदा पछाणिया जांदा। पग किहो जी बनदा है, भाव इस नूं अपने सजन सजाउण दा ख्याल भी है कि, और यही वजह है कि लोग तां कहंदे ने पग बननी है लेकिन गुरु का सिख कहंदा दस्तार सजाउणी है, क्योंकि उहनूं बड़ा ख्याल है कि मेरे सजन दा सवाल है, मैं सजिया सजाया गया ते सज के रहना मेरा काम। दस्तार तो पता लगता है इस बंदे दी रहनी बहनी की है, भाव वस्त्र पाउण तो रहनी बहनी तो मनुख दे अंदर दी सफाई दा ते अपने आप नूं बना के रखण दी रुचि दा पता लगता है, चाल तो पता लगता है इहनूं तुरना आउंदा है, चाल तो ही चाल चलन दा भी पता लगता है, ते गुफ्तार तो जबान तो बोलन तो भी पता लगता है इसके अंदर की है। जो जीए होए सो उगवे, जबान तो ही निकलेगा जो अंदर है, अंदर बाणी है ते मुंहों बाणी निकलेगी, अंदर प्यार है ते मुंहों प्यार निकलेगा, अंदर नफरत है ते मुंहों गाला निकलेंगी। सतगुरु की कृपा दे नाल मनुख दे लक्षण बदलते, पर उदों बदलते जदों गुरु के मार्ग पै जाते।

अंदर कौतक वरता रहे। ड्योड़ी च भाई पुराणा जी बैठे दर्शन करन चित कीता, उठे सुलाखां दे परले पासे निगाह गई, सारा दिन बगदी रही अग दी रोशनी विच वेखे है। कुरला उठे साहिबां दे शरीर ते पए हुए छाले, सिख कोलों प्यार विच बर्दाश्त नहीं होया, उन्हां सुलाखां नूं सिखां नूं फड़िया, जोर दी झटका मारिया। साहिबां ने नेत्र खोले, मुस्कुरा के वेखिया। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह, गुरमत सिखाउण वाले तू ही मुस्कुरा सकना, गुरमत तो बारा केड़ा मुस्कुरा ले। मुस्कुरा के तकिया, भाई पराणा की हो गया, पातशाह मैथों नहीं जरिया जांदा। ते साहिब कहंदे ने वापर रही ने मेरे शरीर ते जरिया तैथों नहीं जांदा। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना। भाई गुरदास जी, भाई पराणा मालक दी रचना है, जो कर रहे है मेरे शरीर ते वापर रही है ते मैं सह रहे हैं। तेरे कोलो नहीं सह, तेरे शरीर ते आ गई ते की करेगा बादशाह। मैनू तुसी आ गया देओ, मैं तबाह कर दिया सारा कुछ, मैं फना कर दिया। साहब हस पे कह लगे, भाई पराणा जितन फना करना होगा जिन्हें रचिया आपे कर ले, तेनू फना करन दा फिक्र कित्थों पै गया, तू फना करन दीआं ताकतां कित्थों आ गईआं तेरे विच। कहिंदा पातशाह तेरे चरणा विचों। ते साहिब हस के कहिंदे ने, भाई पराणा जे मेरे चरणा चों तबाह करन दीआं ताकतां तेरे कोल आईआं ने ते फिर मैं ही नहीं तबाह कर सकदा, मैं जे तोड़ना फोड़ना चाहवां मैं नहीं कर सकदा। नहीं भाई पराणा, आपां कुछ करता पुरख दी रचना विच कुछ बना सकीए, कुछ उसार सकीए ते गल वखरी है। तबाहियां दी गल आपां नहीं सोचनी, आपा तो उसारियां की गल सोचनी। मन नू टिकाने रख, हौसले विच रहो, ओदी रजा विच रहो। साहिब उठे अपने आसन तो, उठे ते आके मोढ़े ते हथ रख दिता, सिखां विचों पार करके प्यारा जिहा हथ भाई पुराणे दे मोढ़े ते रखिया। वह जिहड़ी अंदर जप तप की शक्ति उछाले मारन लग पई सी सारी दबा दिती, ठंड वरता दिती। आ गए बाहरों पैरुए, उन्होंने आके भाई जी बड़ा कुटिया, बड़ा मारिया, पर मालक की बख्शिश की हुई, धन गुरु अर्जन साहब की बख्शिश की, सहनशीलता सदका फिर भाई पुराणे ने हाए नहीं की, सी नहीं उचारी। वाहेगुरू वाहेगुरू जपदिया होया बेसुरती तक तो पहुंच गए, लेकिन हाए नहीं आखी, क्योंकि रजा च रहना आ गया। रजा च रहना आ जाए ना तो फिर हाए नहीं मुंहों निकलती, शुक्र मुंहों निकलता है।

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आउंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देव

तन जियो तैको जग में, तन जियो तैको जग में, मुक्ते हर चित्त में युद्ध विचार।

तेरा था भी सोना, तेरा रूप भी सोना, तेरे भगत भी सोना। सुंदर स्वामी धाम मालक दा दर सोना है, एक गल दा ख्याल रखना, मालक दा दर केड़ा है। सो दर के हा, सो कर के हा, जित दर वसें कवन दर कही है।

जगी और न यह महात्मे अवतारी उजागर यान कियो तिनके दुख कोटिक दूर गे मथुरा जिन।